ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताज़ा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने बुधवार को बताया कि अमरीकी अधिकारियों का मानना है कि वे ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। हालांकि ईरानी नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव में अस्वीकार्य प्रावधान शामिल हैं। एक्सियोस के अनुसार ये एक पृष्ठ का समझौता ज्ञापन है। मामले के जानकार अधिकारियों और अन्य लोगों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने बताया कि योजना में लड़ाई समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने जैसे 14 बिंदु हैं। सूत्रों के अनुसार वार्ता इस बात पर की जा रही है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कितने समय तक रोके। सूत्रों के अनुसार ये अवधि कम से कम 12 वर्ष होगी, जबकि एक सूत्र ने 15 वर्ष बताई है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार दोनों पक्ष मध्यस्थों के साथ काम कर रहे हैं और संभवतः अगले सप्ताह पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो सकती है। ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि पिछले 24 घंटों में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और ये काफ़ी संभव है कि हम किसी समझौते पर पहुंच जाएं। उधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्र ने आगाह किया कि अमरीकी धमकियाँ प्रभावी नहीं हैं और इनसे हालात बदतर ही होंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि शीर्ष राजनयिक अब्बास अरागची ने बुधवार को पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। मंत्रालय के अनुसार अरागची ने चीन को ईरान का सच्चा मित्र और सामरिक साझेदार बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि द्विपक्षीय सामरिक सहयोग व साझेदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। अरागची ने चीन के रुख की सराहना भी की कि उसने विशेष रूप से अमरीकी और इजरायली कार्रवाइयों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए उनकी निंदा की। खबर है कि अरागची ने लड़ाई समाप्त करने की राजनयिक प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो राजनयिक क्षेत्र में भी संजीदा और दृढ़ है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने अरागची से कहा कि तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम समझौता बेहद ज़रूरी है और दोबारा शत्रुता पालने से बचना होगा। बताया जाता है कि उन्होंने वार्ता जारी रखने के महत्व पर बल दिया। खबरों के मुताबिक वांग ने कहा कि चीन तनाव और शत्रुता कम करते हुए पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। होर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में उन्होंने कहा कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस जलमार्ग से सामान्य व सुरक्षित नौवहन बहाली को लेकर चिंतित है। टोक्यो शेयर बाजार के मानक सूचकांक निक्के 225 ने पहली बार 63,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। निवेशक वसंतकालीन अवकाश के बाद बृहस्पतिवार को बाजार में लौटे। एक समय निक्के में 3,500 से भी अधिक अंकों का उछाल देखा गया, जो किसी एक कारोबारी दिन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। ईरान संघर्ष जल्द समाप्त हो सकने की अटकलों के चलते ये वृद्धि देखी गई। एआई और सेमीकंडक्टर संबंधी शेयरों ने इस वृद्धि में योगदान किया। 225 शेयरों का निक्के सूचकांक 62,833 पर बंद हुआ, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। वसंत अवकाश के दौरान येन में भी तेज उछाल आया, जिससे इन अटकलों को बल मिला कि जापानी अधिकारियों ने एक बार फिर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। बृहस्पतिवार दोपहर डॉलर के मुकाबले येन का मूल्य 156 के निचले स्तर के आसपास था।

0: ये समाचार NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस्तांबुल में जारी एक विशाल रक्षा उपकरण प्रदर्शनी में दुनिया भर की 1700 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। मंगलवार को आरंभ हुए इस 5 दिवसीय मेले में ड्रोन और रक्षा प्रणालियों सहित अलग अलग तरह की रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जा रही है। ड्रोन निर्यातक के रूप में तुर्की के रक्षा उद्योग ने तीव्र विकास किया है। जापान सरकार ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पिछले साल नाटो सदस्य तुर्की के साथ एक समझौता किया था। इस पृष्ठभूमि में दोनों देशों के अधिकारियों ने रक्षा उपकरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए समझौता दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के निजी क्षेत्र की कंपनियां ड्रोन सहित रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास करते हुए संबंध मजबूत करेंगी। जापान के विदेश मंत्री और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा सहित आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। मोतेगी तोशिमित्सु और रोनाल्ड लामोला ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका में बातचीत की। 4 अफ्रीकी देशों के मोतेगी के दौरे का ये अंतिम चरण था। मोतेगी ने दक्षिण अफ्रीका को एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया जो स्वतंत्रता और विधिवत शासन जैसे सिद्धांतों को साझा करता है, जो मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का आधार हैं। मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने में सहयोग करेंगे। दक्षिण अफ्रीका प्लैटिनम और मैंगनीज सहित संसाधन समृद्ध देश है। मोतेगी और लामोला इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएंगे। मोतेगी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जापान अफ्रीका के लिए एक दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदार है। मोतेगी और रामाफोसा ने इस बात की पुष्टि की कि वे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिक समन्वय से काम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अपने दौरे के अंत में पत्रकारों से बात करते हुए मोतेगी ने कहा कि उनकी यात्रा का एक उद्देश्य टोक्यो की संसाधन कूटनीति को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि अधिकांश रूप से आयात पर निर्भर जापान के लिए आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: NHK World Japan की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 10वें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं 10वें पाठ की बातचीत।
2: तकसान अरिमासु ने। सुगोई देशो। कोरे वा सारा सारा हेया। कोरे वा त्सुया गा देरु टाइप। हे, इकुरा देसु का? सेलु त्ते काइते अरु। कीते मियो। सुमिमासेन। このドライヤーはいくらですか
3: ？9900円です。
2: え、高すぎます。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
2: たくさんありますね。
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
2: すごいでしょ。
1: बढ़िया है ना?
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
2: कोरे वा सारा सारा हेया।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
2: कोरे वा त्सुयांगा देरु टाइप।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: हे, इकुरा देसु का?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
2: सेरु त्ते काइते अरु।
1: सेल लिखा हुआ है।
2: कीते मियो?
1: पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई,
2: すみません।
1: माफ कीजिए।
2: このドライヤーはいくらですか?
1: ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 9900円です。
0: 9900円का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली,
2: え、高すぎます。
1: ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: この
0: का अर्थ है ये,
4: ドライヤー
0: का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
4: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
4: いくら
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
4: いくらですか?
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है いくらですか?
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
4: これ、それ、あれ
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
4: これはいくらですか?
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
4: これ、それ、あれ
1: की जगह कह सकते हैं
4: この、その、あの
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा このドライヤーはいくらですか? यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए। सुनिए और दोहराइए,
4: このドライヤーはいくらですか?
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
5: すみません、この炊飯器はいくらですか?
6: 8700円です。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
5: すみません,
1: माफ कीजिए,
5: この炊飯器はいくらですか?
1: ये राइस कुकर कितने का है?
0: इस वाक्य में
4: सुईहांकी
0: का अर्थ है राइस कुकर।
1: जवाब में दुकानदार ने कहा,
6: 8700 円です。
0: 8700円か。
7: 円
1: का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
0: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
4: अनो,
1: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
4: इयाहोन।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
1: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 20 से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
4: जी
1: यानी 10 जोड़ते हैं।
0: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी दो, और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
1: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
4: जू, निजू, सांजू, योंजू, गोजू, रुकुजू, ननाजू, हचीजू, क्यूजू।
0: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं
4: 100।
0: 100 के गुणक बनाने के लिए भी
4: 100
0: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
1: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा नी 100।
0: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
4: 300,
0: 600 है
4: 600
0: और 800 है
4: 800।
1: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
4: सेन,
1: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
0: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
4: सानजेंग
0: और 8000 को कहते हैं
4: हसेंग।
1: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
4: 1234।
0: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: たくさんありますね。すごいでしょ？これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
2: え、高すぎます。
8: ハルさんの知恵袋。
0: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
1: जापान में 4 तरह के नोट हैं। 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
0: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
1: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं। 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम असाकुसा जाएंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराध

3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 7 मई बृहस्पतिवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सग्गू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने बुधवार को बताया कि अमरीकी अधिकारियों का मानना है कि वे ईरान के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने के करीब हैं। हालांकि ईरानी नेताओं का कहना है कि प्रस्ताव में अस्वीकार्य प्रावधान शामिल हैं। एक्सियोस के अनुसार ये एक पृष्ठ का समझौता ज्ञापन है। मामले के जानकार अधिकारियों और अन्य लोगों का हवाला देते हुए एक्सियोस ने बताया कि योजना में लड़ाई समाप्त करने, होर्मुज जलडमरू मध्य को खोलने और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रतिबंध लगाने जैसे 14 बिंदु हैं। सूत्रों के अनुसार वार्ता इस बात पर की जा रही है कि ईरान अपना यूरेनियम संवर्धन कितने समय तक रोके। सूत्रों के अनुसार ये अवधि कम से कम 12 वर्ष होगी, जबकि एक सूत्र ने 15 वर्ष बताई है। वहीं वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार दोनों पक्ष मध्यस्थों के साथ काम कर रहे हैं और संभवतः अगले सप्ताह पाकिस्तान में बातचीत शुरू हो सकती है। ट्रंप ने बुधवार को पत्रकारों से कहा कि पिछले 24 घंटों में बहुत अच्छी बातचीत हुई है और ये काफ़ी संभव है कि हम किसी समझौते पर पहुंच जाएं। उधर ईरान की तस्नीम न्यूज़ एजेंसी ने एक सूत्र के हवाले से बताया कि ईरान ने अब तक कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्र ने आगाह किया कि अमरीकी धमकियां प्रभावी नहीं हैं और इनसे हालात बदतर ही होंगे। ईरान के विदेश मंत्रालय का कहना है कि शीर्ष राजनयिक अब्बास अरागची ने बुधवार को पेचिंग में चीन के विदेश मंत्री वांग यी के साथ बातचीत की। मंत्रालय के अनुसार अरागची ने चीन को ईरान का सच्चा मित्र और सामरिक साझेदार बताते हुए विश्वास व्यक्त किया कि द्विपक्षीय सामरिक सहयोग व साझेदारी पहले से कहीं अधिक मजबूत होगी। अरागची ने चीन के रुख की सराहना भी की कि उसने विशेष रूप से अमरीकी और इजरायली कार्रवाइयों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन बताते हुए उनकी निंदा की। खबर है कि अरागची ने लड़ाई समाप्त करने की राजनयिक प्रक्रिया के बारे में बताते हुए कहा कि ईरान किसी भी हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और वो राजनयिक क्षेत्र में भी संजीदा और दृढ़ है। वहीं चीन के विदेश मंत्रालय के अनुसार वांग ने अरागची से कहा कि तत्काल और व्यापक संघर्ष विराम समझौता बेहद ज़रूरी है और दोबारा शत्रुता पालने से बचना होगा। बताया जाता है कि उन्होंने वार्ता जारी रखने के महत्व पर बल दिया। खबरों के मुताबिक वांग ने कहा कि चीन तनाव और शत्रुता कम करते हुए पश्चिम एशिया में शांति व स्थिरता बहाल करने में बड़ी भूमिका निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। होर्मुज जलडमरू मध्य के संबंध में उन्होंने कहा कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस जलमार्ग से सामान्य व सुरक्षित नौवहन बहाली को लेकर चिंतित है। टोक्यो शेयर बाजार के मानक सूचकांक निक्के 225 ने पहली बार 63,000 का आंकड़ा पार कर लिया है। निवेशक वसंतकालीन अवकाश के बाद बृहस्पतिवार को बाजार में लौटे। एक समय निक्के में 3,500 से भी अधिक अंकों का उछाल देखा गया, जो किसी एक कारोबारी दिन में अब तक का सबसे बड़ा उछाल है। ईरान संघर्ष जल्द समाप्त हो सकने की अटकलों के चलते ये वृद्धि देखी गई। एआई और सेमीकंडक्टर संबंधी शेयरों ने इस वृद्धि में योगदान किया। 225 शेयरों का निक्के सूचकांक 62,833 पर बंद हुआ, जो अब तक का सर्वोच्च स्तर है। वसंत अवकाश के दौरान येन में भी तेज उछाल आया, जिससे इन अटकलों को बल मिला कि जापानी अधिकारियों ने एक बार फिर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप किया है। बृहस्पतिवार दोपहर डॉलर के मुकाबले येन का मूल्य 156 के निचले स्तर के आसपास था।

0: ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। इस्तांबुल में जारी एक विशाल रक्षा उपकरण प्रदर्शनी में दुनिया भर की 1700 से अधिक कंपनियां भाग ले रही हैं। मंगलवार को आरंभ हुए इस 5 दिवसीय मेले में ड्रोन और रक्षा प्रणालियों सहित अलग अलग तरह की रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शित की जा रही है। ड्रोन निर्यातक के रूप में तुर्की के रक्षा उद्योग ने तीव्र विकास किया है। जापान सरकार ने रक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए पिछले साल नाटो सदस्य तुर्की के साथ एक समझौता किया था। इस पृष्ठभूमि में दोनों देशों के अधिकारियों ने रक्षा उपकरण क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए समझौता दस्तावेजों का आदान प्रदान किया। उन्हें उम्मीद है कि दोनों देशों के निजी क्षेत्र की कंपनियां ड्रोन सहित रक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास करते हुए संबंध मजबूत करेंगी। जापान के विदेश मंत्री और दक्षिण अफ्रीका के अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग मंत्री ने महत्वपूर्ण खनिजों और ऊर्जा सहित आर्थिक क्षेत्रों में संयुक्त प्रयास बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। मोतेगी तोशिमित्सु और रोनाल्ड लामोला ने मंगलवार को दक्षिण अफ्रीका में बातचीत की। 4 अफ्रीकी देशों के मोतेगी के दौरे का ये अंतिम चरण था। मोतेगी ने दक्षिण अफ्रीका को एक महत्वपूर्ण भागीदार बताया जो स्वतंत्रता और विधिवत शासन जैसे सिद्धांतों को साझा करता है, जो मुक्त एवं खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र का आधार हैं। मंत्रियों ने इस बात की पुष्टि की कि दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाए रखने और मजबूत करने में सहयोग करेंगे। दक्षिण अफ्रीका प्लैटिनम और मैंगनीज सहित संसाधन समृद्ध देश है। मोतेगी और लामोला इस बात पर सहमत हुए कि दोनों देश महत्वपूर्ण खनिजों, ऊर्जा, विकार्बनीकरण और अन्य आर्थिक मुद्दों पर सहयोग बढ़ाएंगे। मोतेगी ने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जापान अफ्रीका के लिए एक दीर्घकालिक और विश्वसनीय साझेदार है। मोतेगी और रामाफोसा ने इस बात की पुष्टि की कि वे द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाने और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अधिक समन्वय से काम करने के लिए प्रयासरत रहेंगे। अपने दौरे के अंत में पत्रकारों से बात करते हुए मोतेगी ने कहा कि उनकी यात्रा का एक उद्देश्य टोक्यो की संसाधन कूटनीति को बढ़ावा देना था। उन्होंने कहा कि अधिकांश रूप से आयात पर निर्भर जापान के लिए आपूर्तिकर्ता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 10वें पाठ में सीखेंगे दाम पूछना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो अपनी सहेली आयाका के साथ विद्युत उपकरणों की दुकान में आई है। ताम बाल सुखाने का ड्रायर खरीदना चाहती है।
0: तो आइए सुनते हैं 10वें पाठ की बातचीत।
2: すごいでしょ。これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。へえ、いくらですか？セールって書いてある。聞いてみよう。すみません。このドライヤーはいくらですか？9900円です。え、高すぎます。अब
1: इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: दुकान में तरह तरह के ड्रायर देखकर ताम सोच में पड़ गई। उसने कहा,
1: बहुत सारे हैं।
0: तब आयाका बोली,
2: सुगोई देशो,
1: बढ़िया है ना।
0: फिर आयाका ताम को तरह तरह के ड्रायर दिखाने लगी।
2: कोरे वा सरा सरा है या।
1: ये बालों को रेशमी बनाता है।
2: कोरे वा त्सियांगा देरु टाइप।
1: इससे बालों में चमक आती है।
0: उसके बाद ताम ने पूछा,
2: इकुरा देस का?
1: अच्छा, कितने का है?
0: आयाका ने ड्रायर पर लगी पर्ची देखी, लेकिन उस पर लाल रंग से केवल सेल लिखा हुआ था। उसने कहा,
2: सेल उत्ते कहते आरु।
1: सेल लिखा हुआ है।
2: कीते मिया?
1: पूछते हैं।
0: ताम ने दुकानदार को आवाज लगाई।
2: सुमिमासे।
1: माफ कीजिए।
2: कोनो ड्रायर वा इकुरा देस का?
1: ये ड्रायर कितने का है?
0: दुकानदार ने बताया,
3: 9900円 です।
0: 9900円 का।
1: ये सुनकर ताम हैरान होकर बोली,
2: え、高すぎます।
1: ओह, बहुत महंगा है।
0: ताम ने ड्रायर के दाम तो पूछ लिए, लेकिन वो उसके लिए बहुत महंगा था।
1: आज का मुख्य वाक्य है,
2: このドライヤーはいくらですか?
1: यानी ये ड्रायर कितने का है? ये वाक्य याद करके आप खरीदारी करते समय दाम पूछ सकेंगे।
0: इस वाक्य में
4: कोनो
0: का अर्थ है ये,
4: ड्रायर
0: का मतलब है बाल सुखाने का ड्रायर,
4: वा
0: वाक्य का विषय बताने वाला कारक है, और
4: इकुरा
0: का अर्थ है कितने का।
1: आज के पाठ में ध्यान देने वाली बात ये है कि किसी चीज का दाम पूछते समय जापानी में कहते हैं
4: इकुरा देसु का,
1: यानी कितने का है। तो आपको बस उस चीज की तरफ इशारा करना है जिसका नाम आप पूछना चाहते हैं और कहना है इकुरा देसु का।
0: इसके अलावा आप पिछले पाठों में सीखे संकेतवाचक सर्वनामों का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको याद होगा संकेतवाचक सर्वनाम है
4: कोरे, सोरे, अरे,
0: यानी ये, वो या वो दूर। जैसे आपका वाक्य हो सकता है
4: कोरे वा इकुरा देसु का,
0: यानी ये कितने का है।
1: अगर आपको उस चीज का नाम पता हो तो आप
4: कोरे, सोरे, अरे
1: की जगह कह सकते हैं
4: कोनो, सोनो, अनो
1: और उसके बाद उस चीज का नाम। जैसे ड्रायर का दाम पूछना हो तो वाक्य बनेगा कोनो दोराइया वा इकुरा देसु का, यानी ये ड्रायर कितने का है।
0: तो अब आप भी उच्चारण का अभ्यास कर लीजिए, सुनिए और दोहराइए।
4: このドライヤーはいくらですか?
1: अब एक और छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें ग्राहक दुकानदार से किसी चीज का दाम पूछ रहा है।
5: すみません。この炊飯器はいくらですか?
3: 8700円です。
0: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले महिला ने पूछा,
5: सुमिमासेन,
1: माफ कीजिए,
5: कोनो सुईहान की वा इकुरा देसु का?
1: ये राइस कुकर कितने का है?
0: इस वाक्य में
4: सुईहान की
0: का अर्थ है राइस कुकर।
1: जवाब में दुकानदार ने कहा,
3: 8700円です。
0: 8700円か。
6: 円
1: का मतलब है जापान की मुद्रा येन।
0: तो फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: すみません。この炊飯器はいくらですか？
1: अब वाक्य बनाकर देखिए। मान लीजिए आप किसी दुकान में ऊंची शेल्फ पर रखे ईयरफोन का दाम पूछना चाहते हैं। चीज आपसे और दुकानदार से दूर रखी है, इसलिए उसके नाम से पहले लगाएंगे
4: अनो,
1: और ईयरफोन का जापानी उच्चारण है
4: इयाहोन।
1: तो वाक्य बनाने की कोशिश कीजिए।
2: すみません、あのイヤホンはいくらですか？
0: अब सीख लेते हैं कुछ संबंधित शब्द। आज की बातचीत में दुकानदार ने ड्रायर का दाम बताया। इससे पहले हम 10 तक की गिनती सीख चुके हैं, आज कुछ बड़ी संख्याएं सीखते हैं।
1: पहले दो अंकों की संख्याओं की बात करते हैं। 20 से लेकर 90 तक के 10 के गुणकों को जापानी भाषा में बोलने के लिए 2 से 9 तक की संख्याओं के साथ
4: जू
1: यानी 10 जोड़ते हैं।
0: अगर 20 कहना है तो उसके पहले बोलेंगे नी यानी 2 और उसके बाद जू यानी 10, तो बन जाएगा नी जू।
1: तो जापानी भाषा में 10 से लेकर 90 तक 10 के गुणक हैं
4: जू, निजू, सांजू, योंजू, गोजू, रुकुजू, ननाजू, हचीजू, क्यूजू।
0: अब बात करते हैं 3 अंकों की संख्याओं की। 100 को जापानी में कहते हैं
4: 100।
0: 100 के गुणक बनाने के लिए भी
4: 100
0: से पहले 2 से 9 की संख्याएं जोड़ी जाती हैं।
1: इसलिए जापानी में 200 बोलने के लिए नी के बाद 100 जोड़कर बनेगा नी 100।
0: लेकिन कुछ संख्याओं के साथ उच्चारण बदल जाता है, जैसे 300 है
4: 300,
0: 600 है
4: 600
0: और 800 है
4: 800।
1: अब 1000 की गिनती सीखते हैं। 1000 को कहते हैं
4: सेन,
1: और उसके गुणक बनाने के लिए भी सेन से पहले 2 से 9 तक के अंक लगाए जाते हैं।
0: यहाँ भी कुछ संख्याओं का उच्चारण बदलता है। 3000 को कहते हैं
4: सानजेंग
0: और 8000 को कहते हैं
4: हसेंग।
1: बड़ी संख्याएं बोलने के लिए बड़े अंक से छोटे अंक को क्रम में बोलते हैं, जैसे 1234 को जापानी भाषा में कहेंगे
4: सेन निहाकु सांजु योंग।
0: तो अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: たくさんありますね。
5: すごいでしょ。
2: これはサラサラヘア。これはツヤが出るタイプ。
5: へえ、いくらですか？
2: セールって書いてある。聞いてみよう。
5: すみません。
2: このドライヤーはいくらですか？
3: 9900円です。
5: え、高すぎます。
7: 春さんの知恵袋。
0: अब बारी है हारू जी की सलाह की। आज हम बताएंगे जापान के नोट और सिक्कों के बारे में।
1: जापान में 4 तरह के नोट हैं। 1000 येन, 2000 येन, 5000 येन और 10000 येन के।
0: जापान के लोग नए नोट पसंद करते हैं। शादी या अन्य खुशी के अवसरों पर उपहार में पैसे देते समय नए नोट देना उचित माना जाता है। उपहार में पैसे देने के लिए यहाँ खास लिफाफे मिलते हैं, लोग उनमें नए नोट डालकर भेंट करते हैं।
1: इसके अलावा जापान में 6 तरह के सिक्के हैं। 1 येन, 5 येन, 10 येन, 50 येन, 100 येन और 500 येन के। वेंडिंग मशीनों में 1 और 5 येन के सिक्के नहीं चलते, उनका इस्तेमाल दुकान से खरीदारी करते समय ही हो सकता है। दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में ताम आसाकुसा जाएंगी। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये खबरें NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं। इस्तांबुल में दिफाई साजो सामान की एक बड़ी नुमाइश जारी है, जिसमें दुनिया भर की 1700 से ज़ायद कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इस 5 रोज़ा नुमाइश का आगाज़ मंगल को हुआ। इवेंट में जदीद तरीन ड्रोन्स और दिफाई निज़ामों समेत मुख्तलिफ अकसाम की दिफाई टेक्नोलॉजियों की नुमाइश जारी है। तुर्की की दिफाई सनत ने ड्रोन्स के बरामद कुनिंदा के तौर पर तेज़ी से तरक्की की है। दिफाई तआवुन बढ़ाने के लिए जापानी हुकूमत ने गुज़श्त साल तुर्की के साथ एक मुआहदा किया था, जो नेटो का रुकन है। इस पस मंज़र में दोनों ममालिक के हुकाम ने मुआहदे के नुकात का तबादला करते हुए दिफाई साजो सामान के शोबे में तआवुन बढ़ाने के अज़्म की तस्दीक की। दोनों फरीक ये तवक्को रखते हैं कि उनके मुल्क की निजी शोबे की कंपनियाँ मुश्तरका तौर पर ड्रोन समेत दिफाई साजो सामान तैयार करके बाहमी ताल्लुकात में तकवीत का सबब बनेंगी। जापान के वजीर खारजा और जनूबी अफ्रीका के बैन अलाक्वामी ताल्लुकात और तआवुन के वजीर ने अहम मादनियात और तवानाई समेत इक्तिसादी शोबों में मुश्तरका कोशिशों को बढ़ाने पर इत्तेफाक किया है। मोतेगी तोशिमित्सु ने 4 अफ्रीकी ममालिक के अपने दौरे के आखिरी मरहले में मंगल को जनूबी अफ्रीका में रोनाल्ड लामोला से बातचीत की। मोतेगी ने जनूबी अफ्रीका को एक अहम पार्टनर करार देते हुए कहा कि दोनों ममालिक आज़ादी और कानून की हुक्मरानी जैसे उसूलों का एहतराम करते हैं, जो आज़ाद और खुले हिंद बहरुल काहिल की बुनियाद हैं। बुजरा ने इस बात की तस्दीक की कि दोनों ममालिक बैन अलाक्वामी निज़ाम को बरकरार रखने और इसे मजबूत बनाने में तआवुन करेंगे। जनूबी अफ्रीका प्लाटेनियम और मैंगनीज समेत कुदरती वसाइल से मालामाल है। मोतेगी और लामोला ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि दोनों ममालिक अहम मादनियात, तवानाई, डी कार्बनाइजेशन और दीगर इक्तिसादी उमूर में तआवुन को तकवीत देंगे। मोतेगी ने जनूबी अफ्रीका के सदर सिरिल रामाफोसा से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जापान अफ्रीका का देरीना और काबिल एतमाद शराकत दार है। मोतेगी और रामाफोसा ने इस बात की तस्दीक की कि वो दो तरफा ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाने के लिए काम करेंगे और बैन अलाक्वामी बरादरी में मजीद बाहमी हम आहंगी पैदा करेंगे। दौरे के अख्तिताम पर सहाफ़ियों से बात करते हुए मोतेगी ने कहा कि उनके दौरों का एक मकसद टोक्यो के वसाइल की सिफारतकारी को फ़रोग देना था। उन्होंने कहा कि सप्लायर्स का हुसूल जापान के लिए एक अहम मसला है, जो ज़्यादातर दरामदात पर इन्हिसार करता है। और आखिर में आज की अहम खबर पर एक नज़र। अमरीकी न्यूज़ साइट आक्सियोस ने बुध के रोज़ इत्तला दी है कि वाशिंगटन में हुक्काम का ख्याल है कि वो ईरान के साथ अमन माहदे पर दस्तखत करने के करीब हैं, ताहम ईरानी रहनुमाओं ने कहा है कि इस तजवीज़ में नाकाबिल कबूल निकात मौजूद हैं। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें ख़त्म हुई। मजीद खबरों के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट nhk.jp/urdu।